0: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: आज तक शमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये शमा मरने को तैयार है।

0: अपन तो क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए। तू जा बस।
1: ठीक है।